0: मैं करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वो जो गवाए अगला मोए मोए पाड़ा खाए जिस दाद ता खा बना
1: जिस ऐसा

0: गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे।
1: से तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।
0: और केते गावन से मैं चितना आवन नान क्या विचारे।
1: सुई सुई सदा सच साहेब साचा साची नाई।
0: हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई।
1: रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जन पाई।
0: कर कर वेखे कीता अपना जिवतिसी वडियाई।
1: जो तस भावे सोई कर सी हुक्म ना करना जाई।
0: सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई।
1: मुंदा संतोख सरम पर झोली ध्यान के करे बेभूत।
0: किंथा काल कवारी काया जुगत डंडा प्रतीत।
1: आई पंथी सगल जमा

0: लख लख गेड़ा आखिए है एक नाम जगदीश।
1: इत राह पत पबड़िया चढ़िए होया केस।
0: सुन गल्ला आकाशी की टाई रीस।
1: नानक नजरी पाइए कूड़े कूड़े ठेस।
0: आखन जोर चुपे ना जोर, जोर ना मंगन दे ना जोर।
1: जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।
0: जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुक्ति छुटे संसार।
1: जिस हस जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीचन कोए।
0: राती रुती तिथि वार, पवन पानी अग्नि पाताल।
1: तिस बे धरती थाप रखी धर्म साल, तिस बिच जी जुल के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत।
0: करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार।
1: तिथे सोहन पांच परवान, नदरी कर्म पवे निशान।
0: काच पकाई उथे पाए, नानक गया जा जाए।
1: धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म।
0: केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश।
1: केते वर में घाट घड़िए रूप रंग के वेश।
0: केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते तू उपदेश।
1: केते एंद चंद सूर, केते

0: निश्चल निवास है गनी मलख राज है।
1: निरुक्त स्वरूप है त्रिभुक्त प्रभुत है प्रभुक्त प्रवाह है सजुक्त सुधा है।
0: सदैव अंग स्वरूप है अपेटी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्व साज है।
1: समस्त सलाम है सदैव लया काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है।
0: ओंकार रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
1: त्रिभंग त्रिबादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व भाग्य सु सर्वा अनुरागे।
0: त्रिभुक्त स्वरूप है अशिज है अशुद्ध है के नरकन पर नास है पृथ्वल प्रवास है।
1: निरुक्त प्रवाह सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है।
0: निरुक्त सदा है विभुक्त।

0: सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ज्ञाता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
1: रसावल शन्त्वे प्रसाद
0: नमो नरकनासे सदावं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते
0: अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामेन्द्र पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते
0: नृसाकं सरीके अमितो अमीके सदैवं प्रवाहे जय है जा है
1: भगवती शांत व प्रसाद
0: के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्त कलाम है
1: के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है
0: के रुचि दहाद है के राज करहिंद है करीमल कमाल है के हुसनल जमाल है
1: गनीमल खराज है गरीबल निवाज है हरीफल शिकान है हरासल फिकान है
0: कलंकं प्रणास है समस्त निवास है अगजल गनीम है रजाइक रहीम है
1: समस्त जुबा है के साहेब कला है के नरकंड पर नास है वैसल निवास है
0: के सर्वल गवान है हमेशल रवान है तमामुल तमीज है समस्त अजीज है
1: परम परमीज है समस्त अदीस है अदेसल अलेख है हमेशल अपेख है
0: जमीनल जमा है अमिकल अमा है करीमल कमाल है के युरत जमाल है
1: के अचलंग प्रकाश है के मितो सबास है के अजब स्वरूप है के मितो बेपूत है
0: के अमतो पिसा है के अतुम प्रभा है के अचलंग अनंग है के

0: सर्व वारण है।
1: त्रित कै तरण है जग कै करण है, मन माने है जग जान्य है।
0: सर्वंग पर है सर्वंकर है, सर्वसे है सर्वनाशय है।
1: करुणा कर है विश्वंबर है, सर्वेश्वर है जगतेश्वर है।
0: ब्रह्मंड से खलखंड से पते पर है करुणा कर है।
1: अजपा जप है थपा थप है, कृता कृत है अमृता अमृत है।
0: अमृता अमृत है करुणा कृत है, कृता कृत है करनी कृत है।
1: अमृतेश्वर है परमेश्वर है, अकृता कृत है अमृता अमृत है।
0: अजपा कृत है अमृता अमृत है, नर नायक है खल खायक है।
1: विश्वंबर है करुणालय है, निपनायक है सर्वपायिक है।
0: पापंजन है अरगंजन है, रिप तापन है जप चापन है।
1: अकलंकृत है सर्वाकृत है, कर्ता कर है हरता हर है।
0: परमात्म है सर्वात्म है, आत्म बसे जस के जसे, पुचंग पर्यात छंद

0: दे मुझे मरिया मरण काल का त्रासन मरिया।
1: पूजो सदा हमारे पच्चा श्रीय सुजो करियो रक्षा।
0: राख लिहो मोहे राखन हारे साहिब सन सहाय प्यारे।
1: दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस्तंता।
0: काल पाए ब्रह्म तरा का।

0: को हमारी सकल प्रजा ने आप सवारे
1: शिवगन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो
0: कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानता
1: चीटी ते गुंजर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने
0: जाबुद कर करा करतारा प्रजा तर तप देह पारा
1: जबा कर तुम कब हूँ तुम मैं मिलते दे तर सब हूँ।

शांत। सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया, तिस दास प्यार

0: महान निमख निमख ठाकुर नमस्कारे नानक ओ अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स पात्र रूप न पेखे नेत्र सद की टैल संसंगहित करन सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्री जत पंच दोख ते रहत नान कोट मदे को ऐसा परस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते हुए पिन कर्म करत हो वे न कर्म तिस बैसनु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नी बच्छ केवल भगत कीर्तन संग्राच मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब उपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरे नाम जपावे नानक को बैसनु परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मलक होवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करे नितनीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर कै चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंत जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म सोदै राम राम नाम सारस पीवै उस पंडित के ते जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै वेद प्राण समृत बूजै मूल सुख मैं जाने स्थूल चौवरणा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश है बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरणा मैं जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंत उतारे पस प्रेद मुक्त पात्र को तारे सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जगत किते ना पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास इसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पै तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगे प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूजी पर है सगल संग आत्म उदास ऐसे जुक्त नानक रामदास प्रभ किया ज्ञात मिथावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरक तैसा उस सोग सदा अनंत नहीं व्योग तैसा स्वर्ण तैसी माटी तैसा अमृत तैसी विकाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ताए साए जुक्त नानक पुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के
1: ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਸੋਈ ਫੁਣ ਹੋ ਗਏ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੰਗ ਲਖਣ ਜਾਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪੁਸਤਤ ਕਰੇ ਨੇਕ ਜਾਣੇ ਅੰਤਣ ਪਾਰ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁਵਿਧ ਅਣ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋੜ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋੜ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋੜ ਪੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਕੋੜ ਬਣ ਭਰਮੈ ਉਦਾਸੇ ਕਈ ਕੋੜ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੈ ਕਈ ਕੋੜ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੈ ਕਈ ਕੋੜ ਆਤਮ ਤੇ ਅੰਤਰ ਕਈ ਕੋੜ ਕਵ ਕਵ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਕੋੜ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਕਈ ਕੋੜ ਭੈ ਮਾਨੇ ਕਈ ਕੋੜ ਅੰਧ ਗਿਆਨੇ ਕਈ ਕੋੜ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋੜ ਆਭਿਗ ਆਤਮ ਨੇ ਕੋਰ ਕਈ ਕੋੜ ਪਰ ਦਰਵ ਕੁਹਿਰੈ ਕਈ ਕੋੜ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੈ ਕਈ ਕੋੜ ਮਾਇਆ ਸੁਰਮਾਏ ਕਈ ਕੋੜ ਪਰਦੇ ਸੁਰਮਾਏ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋੜ ਸੇ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋੜ ਰਾਜ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋੜ ਪੰਕੀ ਸਰੋਪ ਪਾਏ ਕਈ ਕੋੜ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਭਜਾਏ ਕਈ ਕੋੜ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋੜ ਦੇ ਸੋ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋੜ ਸਸੇਰ ਸੁਰਨ ਖੇਤਰ ਕਈ ਕੋੜ ਦੇਵ ਦਾਣ ਇੰਦਰ ਚਿੜ ਛਾਤਰ सगल समग्री अपने सुतार नानक जिस जिस भावे तिस दिन सतार कई कोट राज तम सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत रसासत कई कोट कीरतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चर जीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी वै कई कोट जाक निर विसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मेर गाच सब ते नेर सब हूत दूर नानक आप अलपत्रया भरपूर कई कोट पाताल के वासे कई कोट नर सोण निवासे कई कोट जन्म जीव मर कई कोट बोझो नी फिर कई कोट बैठ थी खाए कई कोट काल थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किस प्रभु के हाथ है कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतन लिव लागी कई कोट प्रभु को खोजंत आत्म पार ब्रह्म लहंत कई कोट दर्शन प्रभु प्यास तिनको मिल्यो प्रभु अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट है अवतार कई जुगत किनो विस्तार कई बार पसरु पासार सदा सदा एक ओंकार कई कोट किन्ने बो भात प्राप्त ब्रह्म समात ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभु सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होते आत्म प्रगास कई कोट तत के बेत सदा निहार को नेत्र कई कोट नाम रस पीव मर पैसा सदी जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुमावे

कर्ण कर्ण प्रभु एक है दूसर नाहीं कोय नानक दिस बल हारने जल थल मैल सोयस्पति कर्ण करावन करण जोग ज्योतिष पावै सोई होग किनमें था भूता पुनहारा अंत नहीं किस पारा वार हुक्मे तार दर हवे हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे हुक्मे उचनी व्यवहार हुक्मे अणक्रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सा मेरे समाई प्रभावे मन कत पावे प्रभावे ता पात्र त्रावे प्रभावे बिन सास राखे प्रभावे ता हर गुण पाखे प्रभावे ता पत दुहारी आप करे आपन विचार दुआसर कै आप स्वामी खेले विकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि और न आवे कहो मनुख ते क्या हो आवे जो तिस पावै सोई करावे इसके हाथ होए ता सब कुछ ले जो तिस पावै सोई करे अनजानत विख्या मेरे चे जे जानते अपने आप बचे परमे पूला दै दिस्तावे निमुख मै चार कुंड फिर आवे कर कृपा जिसे अपनी भगत दे नानक ते जाना मिले किन मै नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दै दिस प्रगटावे जाको अपनी करे बख्शीस ताका लेखा न गणे जगदीश जीव पिंड सब दिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बन दया बनाई नानक जीवे देख बड़ाई इसका बल नाही सहाथ करण कराव सर्व को नाथ आज्ञा करी बफरा जियो ज्योतिष भावे सोई गुण थियो कबहू उच नीच में बसै कहूँ सुख हर खरंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबू विकास प्याल

अंतर हुए ज्ञान परगास उस्तत स्थान करने विनाश मन तन नाम रते करंग सदा बसे पारम के संग ज्यों जल में जलिया खटाना त्यों ज्योति संजो समाना मिटके गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सत कुरबान सलोक सुखी बसे मसकी।

जो अंधकार दीपक प्रकाश है, गुरु दर्शन देख मनो विकास, जो माम ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन के बाँचो तूर, नानी की अरड़ चापूर, मन मोर काय बिलाए, प्रोड़ के का लिखिया पाई, दुख सुख प्रभ देव नहार, अवर त्याग तू तिसे जितार, जो कुछ करै सोए सुखमान, भुला काय फिरे अजान, कौन वास्ता है तेरे संग, डॉक्टर रस लोई बसंग, राम नाम जब हृदय माए, नानक पासे तीकर जाए, जिस वकर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाए, ताजे मान ले मन मोड़, राम नाम हृदय में तो लार के संत संग चाल, एवर त्याग खे जंजाल, धन धन कह सब कोए, मुख उजलर दर गए सोए, यह व्यापार बिरला व्यापार, नानक ताके सद बलहार, चरण साध गए तोए तोए पियो, रब साधु को अपना जियो, साधु धूर करो स्नान, साधु प्रजाए कुरबान, सास से वड़फागी पाई है, सास संगर कीर्तन गाई है, अनुपिकंते साधु राखे, हर गुण गाए मृतल चाक, उठ गए संत दरिया, सर्व सुख नानक ते पाए, मृतक को जीवालन हार, भूखे को देव ते आधार, सर्वधान जाके दृष्टि माए, प्रोड़ के का लैना पाए, सबके जिसका करने जोगे, तिसमें दूसर हो न हो गए, जब जन सदा सदा दिन रहनी, सब तेव निर्मल करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जाके मन गुरु की भरती, तै तिह जने आवे अर पहुँचे, भगत भगत सुनिए तै लोय, जाके हृदय को होय, सच करनी सहायता की रह, तै सच हृदय सत मुख है, सच हृदय साचा आकार, सच वरते साचा पासार, पार ब्रह्म जन सच कर जाता, नानक सोजन सत समाता सलोक है, रूप न रेख न रंगिच, त्रैगुण ते प्रभिन्न, तिसे भुजाए नानका, जिस हुआ सो परसा नष्ट पदी, अवनासी परम मन में राख, मानु की तू प्री त्याग, तिस ते प्रेणे किस को सर्व निरंतर एको सोय, आपे बिना आपे दान, गहर गंभीर गहीर सुजान, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपण ध्यान दयाल बख्शन, सात्रे की चरणी पाव, नानक के मन रे अनुराव, मनसा पूर्ण शरणा जोग, जो कर पाया सोई होग, हरण परम जागने त्रफोर, जिसका मंत्र जाने होर, अनद्रुव मंगल सा जाके, सर्व थोकनी करता के, राज में राज जोग में जोगी, तब में तबे तबे सर्व किस्म भोगी, त्याय त्याय भक्त सुख पाए, नानक तिस प्रकार के अंत न पाए, जा की लीला कीमत नाय, सगल देव हारे हो गाय, पिता का जन्म के जाने पूते, सगल पुरोही अपने सूत, सुमत के अंत अंजन दे, जनदास नाम ते आवैसे, तेह गुण में जाको वरमाए, जन्म रे फिर आवे जाए, ऊच नीच तिसके असान, जैसा जनावे तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भी क्रय करंग, नाना विध गिनो विस्तार, भवनासी एक अंकार, नाना जल्द करे खिन माए, पूरे अपूर्ण सब उठाए, नाना विद कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाए, सब कर दिसके सब दिसके ठाओ, जब जब जीवे नान करनाओ, नाम कतारे सगले जंत, नाम कतारे खंड ब्रह्मांड, नाम कतारे समृत वेद पुराण, नाम कतारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम कतारे गास्पताल, नाम कतारे सगले अकार, नाम कतारे पुरियां सब भवन, नाम के समुद्र संसारण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मैं सो जन कथ पाए, रूप सत जाका सत स्थान, ए पुरख सत केवल प्रधान, करतू सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समय समान, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणे निर्मल निर्मले, जिस विजय जिसा पढ़े, सतनाम प्रभु का सुखदाय, विश्वास सतनाम गुरते पाए, सत पदम सत उपदेश, सत तेज जाकर दे प्रवेश, सत निरत पूजे जे कोई, नाम जप ताकी गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मितगत, जिसके सिर सुकरण हार, अवरण बूझ करत विचार, करते कि मित न जाने किया, नानक ज्योतिष भाव है सो वरती, विस्मन विस्म भय विस्माद, जिन पूजे तिसा स्वाद, प्रभ के रंग रात जन रहे, गुर के विषम पदार्थ लय, उस दाते दो काट हार, जाके संग तरे संसार, जन का सेवक सोड़ भागी, जन के संग एक लिखलाकी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुरु प्रसाद नानक कुल पावे सलोक, आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच अष्टभ, चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार।

शरणाय नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए सुख हटल गुरु सेवी एहन सह सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक

सुहावना है एह गुरु की मोहर सुहावन। जब पहले सब सृष्ट उपाई तब ही मानुख देह बनाई, तन इसके सिर केस जो दीनो सो ए तन शिंगारे कीनो। दाड़ा मूछ सिर

नरसे नार होए अवतरे शिव शिव करते जो नर ध्यावे बर्द चने डौरू टमकावे भजे देव कोई और महामाई की पूजा करे नर से

बिन जब पड़े प्रसाद जो पावे, बिन रह रास समा जो खोवे, कीर्तन पड़े बिना जो सोवे, चुगली कर जो गांज बिगारे, त्रिग तिस जन्म जो धर्म बिसारे। प्रातः काल सत्संग ना जावे, तनखादार वे वड्डा कहावे, सत्संग जाए कर चित डुलावे, हर जस सुनते बात चुलावे, निर्तन देख ना पास बहावे, सोतन खाई मूल कहावे।

उनकी सेवा करे बिसेख मधुर बचन साहेबन को भाख चाकर सिंगन को ही राख चाकर सिंगन

धन कीरत सुख राज बड़ाई युवती सुत विद्या बहु भाई ए सब दात गुरु की जान ए सब दात गुरु की जान ताते ने अभिमान

को कर्म कमावत तिन स्यों वर्तन नाहे मिलावे, तिन स्यों वर्तन नाहे मिलावे, जे को रहतिए जग दर्शावत पौल।

सेवा एक कमन गुण कही है। बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्हीं सतगुरु।

वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेवे अंतवार रे मन सेव तू पर त्रिलोचन गुरमिल पही सद सिद बेणी को कुर कियो प्रगास रे मन तू भी हो है दास जय देव त्याग्यो अहमे नाई उधरयो सैन से मन डीग न डोले कहूं जाए मन तू भी तरसे शरण पाए मन तू भी तरसे।

तिसै विसार अवर लगरी संदक तो है साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी।